हारून लंत्राल दसम से तिस्सा त्रेसी देदास देखदा का श्रीलंका बाइला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थान अगत अवरणीय गायक होगे सतुटुमत नर्तन में जनता और लंगावन गायन शैली निशा ओ दशक गणनावक जनप्रियत्व इहलिंग सिटिया बाइला संगीत नव रसयक नव शब्दक सा वेदिका संग सजीवकरण गिना कलाकार मैनिके मालिकावे सीनी मल्ली सीता मन में मल मैनिके वनी गीत उगे नामे अमरणीय कला उगे गायन शैल सरल सतुट सा जनताव समग सृजु संबंधक एथिकल विलासिताव की प्रीति बुना विविध संगीत खंडायम समग वेडकरमिंग श्रीलंका बैल संगीत वगेम अनिकुत गीत जातंत्र वेदिका वलट गिनगिय कलाकार अरुण लंत्रागे गीत अदत् उत्सववल विवाहवल सह सतुट अवस्थावल अनिवार्यं अमुत्ते सतुट नर्तनीय सह जीविते रसे मतक्करवन अमरणीय अंडाक

टोनी हासन श्रीलंका संगीत सा हिंदी जनप्रिय संगीत विशेष स्थानीय जनाद्रेट आदरणीय गायक ओगे सातुटुमत नर्तन में वेदिका सजीवीकरण गायन शैली निशा ओगे बाइला सा अनिकुत गीत लोके प्रसिद्ध नाम बहुत पत्तुना इदस्तम से हत्यावत असुअ दशक बाइला संगीत नव शब्द सा सजीवीकरण गिना कलाकार ओगे गीत वोट तिबु सरलत्व सतुट सा जनता समग सृजु संबंध निशा ओगे गायन विशेषात्व गता उत्सव विवाह सा सतुट अवस्था वाली ओगे गीत अदत अनिवार्य वादने वेनो सिंगल संगीत जनप्रिय कल फाइनियंस अतरट ओगे गी नमद अतुलत वेनो टोनी हसन गे संगीत अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय राशे मतकरण अमरणीय हांडा

सुनील शांत दस नम से पहले उपतलब दस नम से आसुग के साधारण वेन्व के श्रीलंका संगीत पुरोगामी अतिशय गौरव पात्र संगीत अन्य कुसाह गायक और श्रीलंका संगीत स्वदेशीय रासे नव सुरवींसा निर्माणशीलत्व गिना आयक सिंगल संगीत स्वदेशीय हंडक नव मंपेतक सह सत्य रसज्ञना प्रमुख कलाकार ओगे गीत सरल गैंबुरु संवेदिसा श्रीलंकीय संगीत हदवत लगावन रसज्ञनवा संगीत अध्यापने गीत निर्माण सा सुरवीं तुल ओगे दायकत्व श्रीलंका संगीत इतिहास विशाल सटान कला सुनील शांत के गीत अदत असन विट श्रीलंकीय संगीत सत्य रसे निर्माणशीलत्व सा सौंदर्य तावमत जीवमान है।

एंटन रोड्रिगो श्रीलंका बाइला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थान गत जन हृदय आदरणीय गायक ओगे सतटुमत नर्तनमय वेदिका व सजीवीकरण गायन शैली निशा ओ बाइला लोके अमरणीय नामक बवट पत्तुना हत्या व असुव दशक बाइला संगीत नवरसज्ञना जनप्रिय गायक मेनिके मालिकावे सीनिमल्ली मलमेनिके वेनी जनप्रिय बाइला गीत ओगे नामे समग संबंध उना ओगे गायन शैली सरल सतुटु सा जनताव समग सुदु संबंधक अतिकल विलासितावकिन पिरी तिबुना उत्सव विवाह अवस्थावलदी पवा ओगे गीत अनिवार्य वादने उना एंडन रोड्रिगो संगीते अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय बाइला रसे मतक्रोण अमरणीय हंडाक

प्रिंस उदय प्रियंत दसम से हत्या उपतलवा दिदस दाते श्रीलंका विंग सदातम विन्वग्य जनप्रिय संगीते अतिशय संवेदी मृदु हदवतट अतुलन गायकेकुले से जना दरेट आदरणीय कलाकार ओगे गीतवल तिबु सेनेहास दुख मतक सुवंद सा सत्व बाय निसा ओगे हंड थावमत जनता ओगे सित्तुल जीवमानय अणुव देदा दशके प्रेम गीतवल विशेष स्थान लबागत ओहु संदवतियाई मगे मनमाल्य संद तारका मले ओबमा हट दून सेनेहास संद मले मगे मले वेनी गीत ओगे नामे अमरणीय कला ओगे गायन शैल्य सरल मृदु सा गीते हंगीम सुजुम प्रकाश करण विलासिताव किं प्रीति बुना जीविते अभियोग अतरत ओगे संगीते जनतावट सिनेहास सोये सा मतक सुवंदक लबा दुना प्रिंस उदय प्रियंत के गीत अदत असन विट सितट मृदु सोयक सिनेहासक सा अमरणीय संवेदी रसयक लेबिनवा

प्रिया सूर्यसेन श्रीलंका जनप्रिय संगीत अतिशय प्रियतम गायक दशक गणनावक जन हृदय लगाऊ कलाकार ओगे मृदु सुवदन संवेदी हंडत सरल गीत रसयत निशा ओगे गीत अदत जनप्रिय आयमी नोवी जीवमान पवतिन हत्या वसु दशके प्रेम गीत संवेदी गीत सा जनप्रिय गीतों से विशाल जनप्रियत्व लबागत हो गायन शैली सरल नियतमानी सा हदवत सुजम लंगावेन विलासितावकिंग प्रीतिपूर्ण निशा सिनेमा गीत रूपवाणी गीत सा वेदिका संगीत ओसे ओहु श्रीलंका संगीत अमरणीय सटाहनक तबुआ प्रिया सूर्यसेन के गीत असन विट अदत सितट सुवयक सेनेहासक सा अमरणीय मतक सोंदक लबिनुआ

सनत नंदसिरी दस नमस्य हतलिस्ते के उपतलबा देदास विजितुने अपन साधारण समुगत श्रीलंका संगीत लोके अतिशय गौरवेर पात्र उ गायके संगीतज्ञ कुसा गुरु एक ओगे मृदु गैंबुरु हदवतट अतुलुवन गायनत सरल सुरवीम तुलिंग कोडनागन सौंदर्य निसा ओ जन हृदयट अतिशय आदरणीय उना श्रीलंका संगीते नव दशकेकट मम पितक दुं कलाकारवे रूपवाहिनी सिनेमाव गीत निर्माण्य संगीत अध्यापनय मेम सियलुम श्रेष्ठवल ओगे सुविशेषी सटहनक तबा तिबेनो ओगे बिरिंद प्रसिद्ध गायिकाव वु मलकांति नंदसिरी समग ओं श्रीलंका संगीते अमरणीय युगलयक लेस सलकेनो ओगे गीत बोधना लंगट सांसुम भव सितट सुय सा सौंदर्यात्मक संगीत रस गिनावा।